0: Community Radio for Griffith, 95.1 2MIA FM. Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, 2MIA FM.
1: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Bobby's Punjabi Talk Show. Hashtag part of your community.
2: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़ा अपना बॉबी हाजर हाँ, थोड़ा फेवरेट शो बॉबी पंजाबी टॉक शो लैके तो आप शुरू करते हैं अज का शो एक बहुत ही प्यारे शब्द के नाल जिसनों गाया दिलजीत दोसांझ ने। तो उस तो बाद आप गुरमत कथा विचार चलावेंगे 8:45 तक। सो 8:45 तो थोड़ी सोंगस रिक्वेस्ट लवेंगे, जो भी पंजाबी सोंग तुम सुनना चाहते हो साड़ी वैबसाइट पर तुम जा सकते हो www.2miafm.org.io तो जाके रिक्वेस्ट बटन प्रेस करके जो भी पंजाबी गाना तुसी सुनना चाहते हो 10 बजे तक तुसी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। एक्चुअली अज साडे मानयोग अंकल रोहन सिंह चौहान जी अज नहीं आ रहे, उन्हां दी सेहत अजे 100% सही नहीं है, इस करके अगले वीक आउणगे। पर आपां शुरू करदे हां अज दा शो इस बहुत ही प्यारे शब्द दे नाल जिस नूं कहा दिलजीत दोसांझ ने, आर नानक पार नानक।
3: शाह सुल्तान गिरहा से मनो न मिसरे।

कोई कारोबार करे ते उहदे च उन्नति ना होवे ते उस कारोबार तो भी निराश हो जांदा, उदास हो जांदा, बदलदा। इस तरह बाहर मनुख गुरु बदलता रहिंदा, आश्रम बदलता रहिंदा, देवी देवते बदलता रहिंदा, तीर्थ बदलता रहिंदा, सतसंग दे केंद्र बदलता रहिंदा, ते भटक भटक के जद कुछ नहीं मिलता तो ईश्वर तो निराश हो जाता है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। और मैं इस तरह दे अपनी जिंदगी च हजारा मनुख देखे ने निराश। अगर हुण मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आउंदे भी नहीं ते बद्दा चट्टी इक रस्म, अंदरों निराश ने। कारण भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले जागे, बड़े थावां ते झक मारिए जागे देखे ने, पल्ले कुछ नहीं पिया। और वाकई जे 10,000 सतसंगी हवन, 10,000 इस तरह दे मनुख करण वाले हवन, ते किधरे कोई इक अद्धे पल्ले खेड होंदी है, वो भी आम बंदे नूं ते पता चलदा नहीं, तो निराशा। मनुख दे कदम ही दसदे ने जद गुरुद्वारे दी तरफ आ रहा हुंदा है, ए भरोसा ए आसा नहीं कि खेड बनेगी। ए भी मैं अर्ज करदे आं, कदमां दी चाल ही दसदी है निराश है। माड़ा मोटा भी कोई रस्ते च कम पै जाए सतसंग छोड़िया जा सकदा, की है सतसंग कर लिया रोज देखदे आं, थोड़ी जिया भी कोई घटना घट जाए छोड़िया जा सकदा सतसंग। कहिंदे ने दरियावां दे वैण मुट्ठी भर रेत दे नाल नहीं रुकदे, इंज मैं रेत पावा ते आखां दरिया रुक जाए। दरियावां दे वैण मुट्ठी भर रेत दे नाल नहीं रुकदे, परमात्मा दे रस्ते ते जिंदगी दा बहाव बिल्कुल मामूली गल्लां करके रुकिया। मनुख कोल सुन लेना, हरेक कोल सुन लेना, बहुत छोटियां छोटियां गल्लां ने मनुख नूं रोकिया है, बिल्कुल छोटियां छोटियां समस्यावां ने। मुट्ठी भर रेत दे नाल जीवन दे बहाव रुके हुए ने, बहुत छोटियां छोटियां गल्लां करके मनुख रुकिया है। कारण आसा नहीं बजदी। कबीर कहिंदे ना, आसा करिए राम की अवरे आस निरास। एक बड़ा कीमती नुक्ता बयान कर दिता कबीर ने, जितने चिर तक हर एक दे नाल आसा दी डोरी टुटदी नहीं, मनुख आसा दी डोरी प्रभु नाल जोड़दा भी नहीं। जितने चिर तक टोटली निराश ना होवे सारिया तो आस परमात्मा दी बजदी भी नहीं। जितने चिर तक ए आस है फलाने तो सुख मिल सकता है, फलाने तो प्रभुता मिल सकती है, फलाने तो जस मिल सकता है, फलाने तो रस मिल सकता है, ये आशा है, उतने चिर तक यकीन जानो परमात्मा दी कोई आस नहीं है। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आया तो एक रस्म कुछ भय होगा, या एदे विच भी कोई संसार दी आशा होगी निरंकार दी नहीं। आसा करिए राम की अवरे आस निरास। जितने चिर तक मनुख टोटली निराश ना हो जाए प्रभु दी आस पैदा ही नहीं होती। शायद इसे वास्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने साफ कह दिता, आसा मन सा सगल ते आ गए, जगते रहे निराशा। हुण खेड बड़ी औखी है, किस तरह निराश होवेगा, मुश्किल है। इन्नी ते बड़ी आसा दी डोरियां बनी हुई ने, ओ कम सिरे चढ़ गया ते बड़ा आनंद मिल जाएगा, ओ हो गया ते बड़ा रस मिल जाएगा। कुछ भी हो जाए सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी और कुछ भी नहीं होंदा।
कुछ भी नहीं होता। चूंकि शरीर दा पूरा संबंध ही बाहर दा है, ते शरीर दियां लोड़ां भी बाहरों ही पूरियां होंदियां, अंदरों नहीं आउंदियां। शरीर दे अंदर दा पानी बाहर दे पानी नाल संबंधित है। अगर बाहर पानी ना होवे तो अंदर दा भी मुक जाएगा। शरीर दे अंदर दी पवन बाहर दी पवन नाल जुड़ी हुई है। अगर बाहर दी पवन नाल संबंध टूट जाए तो अंदर भी नहीं रहेगी। शरीर दी अंदर दी अग्नि दा बाहर दी अग्नि नाल संबंध जुड़े होया है। अगर बाहरों सूरज ठंडा हो जाए तो उस तो पहले मनुख भी ठंडा हो जाएगा, शरीर भी ठंडा हो जाएगा। ते मुर्दे दी पहचान की, कहिंदे हाथ पैर ठंडे हो गए, ये तो ठंडा हो गया। अंदर गर्मी बनी हुई क्योंकि बाहर अग दा केंद्र सूरज है। अंदर दी पवन बाहर दी पवन नाल संबंधित है। अंदर दा पानी बाहर दे पानी नाल संबंधित है। शरीर दिया जितनिया भी लोड़ा ने बाहरों ही पूरिया होंदिया ने, अंदरों नहीं होंदिया। ते जिन्ने चिर तक ए आसा बजी हुई है, सुख भी बारों मिलेगा, आनंद भी बारों मिलेगा, रस भी बारों मिलेगा। क्योंकि शरीर नू आज तक जो कुछ मिले है बारों मिले और बारों ही मिलता है। ये मनुख बारों निराश नहीं हो सकता। ते जे बारों निराश ही नहीं होया ते परमात्मा दी आस कित्थे है? मुश्किल है, कठिन है। कलगीधर पिता ने भी साफ कह दिता है, मन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। उदास ते निराश तू हो सकदा है, पहले घर नू उजाड़ समझ ले। हर पासे बंदा निराश उदास हो जाए कहिंदा घर जांदे आ। ते गुरु गोविंद सिंह जी कहिंदे घर भी उजाड़ लगे, किए तेरे घर दे। हर वतन परदेश तो उदास हो जाए मनुख, अपने वतन जाइए, देश जाइए, अपने शहर जाइए। साहिब कहिंदे किसी भी शहर चला जाए हर शहर उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, गुरु अर्जन देव जी है ते महा उजाड़, पर कीता की जाए इसने नगर मने है, शहर मने है। उजाड़ नू शहर आखी जा रहे है, कबरां दे कठ नू शहर आखी जा रहे है। जल्दियां हुई चितावां कुछ जल रही ने, कुछ जलन वालिया ने, औखे ना होना। उजाड़ नू शहर कही जाता है गुरु अर्जन देव जी। महाभयान उद्यान नगर कर माने, झूठ समग्री पेख सच कर जाने। झूठ किसनो कहंदे ने, जो है ते नहीं हो जाता है। झूठ जो है और है वो ही सच है। बड़ी ध्यान नाल सुनना, जो है और है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ, ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਾਲ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਸੁਰੈਨ ਬੇਦ ਨਹੀਂ ਸਾਸਤਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲਨਾਓ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਮਾਜ਼
तीर्थां दा भरमण सब कर्म कांड है, सब कर्म कांड है। धार्मिक मनुख होना उस दिन शुरू होता है जब बार सब कुछ तो उदास हो जाए, निराश हो जाए, ते अंतर्मुखी हो गए, ते तीरथ ते अंदर है, अंतर्गत तीरथ मलनाओ। ठीक है, अंदर प्रवेश करन दे कुछ साधन भी ने, बारों जुटाने पैंदे ने। साधन सारे जुटा देईए ते अंदर प्रवेश ना करिए, बस उना साधना नू कर्म कांड कहंदे ने। बस साधन कठे करी जांदा है, साधन ही अंदर प्रवेश नहीं करदा। बार काल है, दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकार। दिन नहीं है, रात नहीं है, समय दी पहचान किस तरह होती है? दिन करके, रात करके। वक्त दी पहचान होती है? दिन करके, रात करके। कबीर कहंदे ने निरंकार दी दुनिया च ना दिन है ना रात है, उन्हां दी कहण तो मुराद यह है समा नहीं है, वक्त नहीं है, काल नहीं है। काल दो रंगी है, काल दिच दुख है सुख है, अकाल दिच दुख सुख नहीं है, ना दुख है ना सुख है। इस चक्कर च ना पै जाना कि नाम जप के सुख मिलता है, नहीं, नाम जप के मनुख दुख सुख दोहा तो उच्चा उठ जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। जद मैनू कोई कहंदा है नाम जप के ते ज्ञानी जी सुख मिलेगा, उदी अवस्था देख के मैनू कहना पैंदा जी हुण सीधा ही मैं कह दिया नहीं मिलेगा। कई दफा मैनू नास्तिक समझ लैंदा है, ये भी मैं अर्ज करा। इस तरह का भुलेखा पता नहीं कईयां नू लग्या, मैं कि नहीं मिलता। जिन्हों तुसी सुख कहंदे हो, सुख ते कबीर कोल भी नहीं सी। जिन्हों तुसी सुख कहंदे हो ते बड़े बड़े अवतारां कोल भी नहीं सी, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियां कोल भी नहीं सी। तो किस तरह मन लईए सुख मिलदा है? ते जे कोई सियाणा पुछ लवे फिर की मिलदा है? सुख दुख तो उच्ची अवस्था मिलदी है, जिथे ना दुख है ना सुख है। ओ की है अवस्था? उस अवस्था दा कोई नक्शा नहीं पेश कीता जा सकता, उस अवस्था नो जवान नल भी बयान नहीं कीता जा सकता। और उस अवस्था दा चित्रण रूपरेखा इन्हां अखां नाल भी वेखना औखा, तो फिर भरोसा किस तरह बजे? मनुख निराश है परमात्मा तो, इतने संतां दे होंदे आया मनुख निराश है, इतने भगतां दे होंदे आया मनुख निराश है, कुरान दे होंदे आया मुसलमान दे अंदर कोई खुदा दी आस नहीं दिखाई देंदी, औखे ना होना। वेदां दे होंदे आया, उपनिषदां दे होंदे आया, सिमरतियां दे होंदे आया, पुराणां दे होंदे आया, कोई आस प्रभु दी हिंदुआं दे अंदर नहीं दिखाई देंदी। खसम दी इतनी बाणी, धुर दरगाह दी इतनी अगम्मी बाणी, होंदे आया भी औखे ना होना। कोई सिखां दे अंदर गुरु दी प्रभु दी आस नहीं दिखाई देंदी। जिंदगी दसदी पई है, जीवन ही दसदा पे है, किस आस दे च मनुख जी रहा है? जिंदगी दसदी पई है। जीवन दा लक्ष्य की है? जिंदगी दसदी पई है। और इस तो पता चलदा है कोई आस प्रभु दी नहीं पैदा हुई, परमात्मा तो ते निराश है। मैं एक दफा फिर दोहरावा, आज तक जो कुछ भी मनुख नो मिलेदा हुई परमात्मा तो ते निराश है। मैं एक दफा फिर दोहरावा, आज तक जो कुछ भी मनुख

दो चार नास्तकां दे मैं बोल किताबां पढ़ियां ने केशव चंद्र बंगाल दे सन, सालू के प्रोफेसर सालू के केरला। ए अपने पहले जीवन विच बड़े आस्तिक सन, वर्त रखने, तीर्थां दा रटन करना, हर कर्म कांड नूं करना, कर करके थके। अंदर दे तीर्थ दी गति करो, गति चलने नूं कहिंदे जाओ, ते मल मल के नहाओ, मैल धुल जाएगी पापां दी, उंज नहीं धुलेगी। इस अंतरीव तीर्थ दी ही थोड़ी जिया विचार आप जी दे सामने रखने हैं। चूंकि मन दी मैल पाप है, तन दी मैल अखां नाल दिखाई देंदी है, मन दी मैल ना दूजियां नूं दिखाई देंदी है, ना खुद साडी अपनी अखां देख सकदियां, समझ नाल देख सकदे हां, बौद्ध नाल देख सकदे हां, उंज नहीं। तन दी मैल समाज नूं नहीं चंगी लगदी, मन दी मैल परमात्मा नूं नहीं चंगी लगदी। तन मैला है, कपड़े मैले ने, बहुत मैले ने, समाज कबूल नहीं करदा। मन मैला है, गुरु कबूल नहीं करदा, परमात्मा कबूल नहीं करदा। मन दी मैल पाप है। सारी दुनिया च ऐसी धारना है, ते सारी दुनिया विच तीर्थ भी ने, ते तीर्थां दी अपनी महानता भी है। पर तीर्थां दे नाल ए जो गल जोड़ दित्ती गई, एथे इशनान करो पाप इतने धुल गए। प्रयागराज विच माघी दा इशनान करो, हरिद्वार विच कुंभ दा इशनान करो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ते कुरुक्षेत्र विच इशनान करो, कुंभी ते वख वख तीर्थां ते इशनान करो, ते वख वख पुरवां दे वख वख तीर्थां दा इशनान करो, पाप धुल जाणगे। बस इथों ही गुरमत न्यारी हो जांदी है, गुरु नानक कहिंदे नहीं धुलणगे, बस इथों ही कुछ गल न्यारी हो जांदी है, नहीं धुलणगे। बल्कि तीर्थां ते रहिंदे होए ते तीर्थां ते इशनान करदे लोकी पाप करी जांदे ने। और कुछ आंकड़े इस ढंग दे नाल ने, भारत विच आम शहरां नालों तीर्थां विच उपद्र ज्यादा ने, तीर्थां ते गुनाह ज्यादा ने, तीर्थां ते पाप ज्यादा ने। बाकी शहरां विच पाप लोकी करदे ने व्यापार विच, राजनीति विच, तीर्थां ते पाप पाउंदे ने धर्म दे नां ते, परमात्मा दे नां ते। इसे वास्ते कलगीधर पिता नूं कहना पिया, पाप करे परमार्थ के वस, ते पापन ते पुन पाप लजाए, धर्म दे नां ते पाप। तो खैर इस गल नूं मैं बहुता ना लमकावां। तीर्थ तप दया दत दान, तीर्थां ते जाके कीता होया इशनान, कीता होया दान। ते तीर्थां दी जिस ढंग दी मनोह ते उस ढंग दी कीती हुई किरिया अगर कोई करे, तो साहिब कहिंदे जे को पावे तिल का मान, एक तिल जिहा उसनों मान मिल जांदा। लोकी कहिंदे बंदा धार्मिक है, तीर्थां ते जांदा है, तीर्थां ते हो आया। पर साहिब कहिंदे दे नाल पाप ते नहीं धुलदे, सिर्फ संसार तो थोड़ी जिहा वड्याई मिल गई। अज तक जो कुछ मिलिया है बारों ही मिलिया है, मनुख नूं पदार्थ मिले ने बारों मिले, परिवार दे संबंध जुड़े ने बारों ही जुड़े ने, मित्र मिले ने बारों ही मिले ने, महल माड़ियां मिलियां ने बारों मिले, जस मिले है